करे नैत्र प्रताप कब कम रह। बिना सुंदुक नहीं को राजा स्वप्न मनोरथ पृथ्वी सब का जय। नाम रंग सर्व सुख हुए बट पागे के सह प्राप्त हुए। कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप। कर्ण करावन करने हर्ष के हाथ का विचार। जैसी दृष्टि करे तैसा होए आपे आप रस हुए जो कुछ की न सो अपने रंग सब ते दूर सब हो कै संग। मुँह चय देखा करे विवेक आपे एक पैन एक मरण बिन से आवे न जय। नानक साधी रहे समाये आप बुद्धि से समझे आप फिर चय सब के साथ। आपकी नुआपन विस्तार सब कर उसका करने हार। उससे पिन को कुछ हुए था तन तरे कैसोए अपने चलता आप करने हार। कौत कर रंगे अपार मन में अब मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत पर स्वामी गुरु प्रसाद गिने बखियानी। सच सच सच सब गिना कूट मत गिने बिरला चीना। भला भला भला त्र रूप सुंदर पार रूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कटकट सुनी सरबन बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सन जो जन पर सोजन द्रुन हार। संत गिन दा नानका बार बार अवतार अष्टपदी। संत के दुख न आड़ घटे संत के दुख न जमते नहीं छूटे। संत के दुख न सुख सो जाए संत के दुख नरक में पाए। संत के दुख न मत होए मरीन संत के दुख न सोभा तेहीन। संत के हृदय का रख न कोय संत के दुख न थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर है। संत के दुख न दे मुख भावे संतन के दुख न गाग चलावै। संतन के दुख न सर्प जुन पाए संत के दुख न त्रगत जुन करवाए।

बलजिंदर ने बोला लास्ट में मैं बेनती करूँगा भाई बलजिंदर सिंह होरां नूं कि आउण कि संगतां दे नाल अपने विचारां दी सांझ पाउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

0: जो आशिक है शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, समझ के खिलौना जिस्म अपना खुशी से फोड़ देते हैं। ना हूरों की हसरत ना तख्तो ताज की, बालम खुदा भी दे खुदाई तो वापस मोड़ दे। शहीदां सिंघां नूं याद करदे, उन्हां दे चरणां च नमस्कारां करदे, शहीदां सिंघां नूं याद करदे, उन्हां दा दिन मनाउंदे आप जी गुरु दरबार अंदर पहुंचे हो। आओ सब तो पहला आपां फतेह दे नाल सांझ पाईए, कोई रसना वांझी ना रवे, प्यार दा सबूत दा दोईं कर जोड़ फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। असी रात दे दीवाना अंदर हाजरी लवाई ते साढ़े तो पहला भी कुछ विचारां होईयां ते हुण भी विचारां तुसी आप जी ने भाई साहब हुणा पासो सरवण कीती है। बहुत बार इदां हुंदा असी कौम दा दर्द लै के दिल च चलदे हाँ, कौम दा दुख लै के चलदे हाँ, ते असी कहिंदे आ वी जिहड़ियां साढ़े मन दीआं भावना असी दूजिआं दे नाल सांझीआं करीए, ते भाई साहब इह जिक्र कर रहे सन। मैं ज़्यादा इस बाबत जिक्र नहीं करना क्योंकि समां साढ़े तो सीमित है। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने ढाडियां नूं माण दित्ता, भाई नत्था जी, भाई अब्दुल्ला जी, और ढाडी जथा आ जिहड़ा जशीलियां जिन्हां ने वारां गाईआं, खिचिआ सुरंगी दा गज, मारिआ ढड ते हथ, वो जिहड़ा जम्मिआ खून वह पिघल गया है। बाजां वाले पातशाह महाराज ने भी रहमतां करके नवाजिआ
1: जी।
0: और जदों मैं अकाल तख्त की गल करदी वी साहिबां ने मीरी और पीरी, शक्ति और भगती, होश और जोश, शांति और क्रांति नूं एक प्लेटफॉर्म ते लियांदा, धर्म और राजनीति दा कट कीता। धर्म उपर है, राजनीति थले है, पर अज दे समें अंदर राजनीतिक लोग अपने आप नूं उपर और धर्म नूं थले मनदे ने। साढ़े दो निशान, एक है पीला निशान साहब, एक है नीला निशान साहब, एक है राजनीति दा, एक है धर्म दा
1: जी।
0: दूजिआं नूं असीं बाद च दसीए, पहलां असीं वी इह देखणा वी साडी अपने कौम दा कट्ठ है, साडा अपना एका है। किते असीं तां नहीं वंड गए, भावां जथेबंदियां अंदर होईए, भावां लीडरां मगर लग के होईए, भावां संप्रदावां मगर लग के, असीं किधर नूं जा रहे हैं। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने माण दिता, तो कि हिंदुस्तान दियां फौजां उत्थे ही अकाल तख्त नूं ढाउण वास्ते चढ़ाई करके आईआं ने, 6 लाख फौज। संतां दे नाल सरकार दी दुश्मनी है। मैं कहिंदी जदों कोई बंदा तुहाडे नाल विरोधता करन ते तुल गया, जदों कोई बंदा तुहाडा नुकसान करन ते आ गया, बहाना भावां कोई भी होवे, वो तुहाडे नाल लड़ाई कर ली मोहरे आवेगा। बहाना ते अज इक गुरु धामां दा बना दिता, सिख कौम ते पहलां ही रड़कदी है। सिखां दी गल करिए, आओ मैं जिक्र करना हिंदुस्तान दीआं फौजां चढ़ के आ गईआं। जदों इतिहास पढ़ते हैं तुसीं कितें इंटरव्यू देख लियो, एक बीबी कहिंदी मैं कई दिन सुत्ती नहीं, मेरे परिवार के 7 जी चले गए, मेरा पति चले गया, मेरा पुत चले गया, मेरे पेकियां दे जी, मेरा भरा चले गया, अज तक नींद नहीं आउंदी रातां नूं।
1: सच
0: एक भैन पहली बारी नमस्कार करन वास्ते अपने पुत नूं लैके आई, ते कई भैणां दा भरा उहदे घर वाला सी। फौजां आईआं 5 जून 6 जून दा जिहड़ा दिन है, जिन्हां ने अखी देखिआ उह कहिंदे सानूं हजे भी डर लगदा, खून ही खून। सरोवर च इशनान करदे सारा खून ना भरिआ, लाशां तैरदियां ने, सिगरटां बीड़ियां। इह गल आखी गई किसे भी दी, तुसीं इज्जत पत लुट सकदे हो, कोई कारवाई नहीं, जो ना तो आ लै सकदे हो, कोई कारवाई नहीं, जुत्ती पा के जोड़े पा के अंदर जा सकदे हो, कोई कारवाई नहीं। जिहड़े सरकार दे बंदे उन्हां नूं हर थां ते खुल है, पर खून ते साडा ही चूसिआ। एक भैण आई कहिंदी बड़े सालां बाद मेरे घरे पुत होया, कई भैणां दा भरा आए, मेरे घर वाले नूं कुझ ना आखिओ, गोली आई जिहड़ी अपने घर वाले नूं पिछे करदी, अपने सीने नाल अपने पुत नूं लाया, घर वाले नूं बचाउंदी लै के जा रही सी, गोली लगी उहदे घर वाले दे धरत ते डिग पिआ। बीबी ने अपना दुपट्टा पाड़ के उहदे उपर दित्ता है, बीबी ने अपना दुपट्टा माड़ के दे दते, कहन लगी साइया तेरे बुढ़े मापिया की सेवा करांगी। अगे गई ते गोली एक उस बच्चे दे लगी, जिथे पति नूं लुटाया उथे बच्चे नूं कोले पा दिता, कहन लगी साइया जिथे तू गया तेरा पुत भी आ गया, हुण मैं कल्ली चली हाँ, तेरे बुढ़े मापे उड़ीक दे होणगे। नेचर नूं एक गोली होर आई, वह भैण दे लगी, उथे डिग पई। रेड़ के अपने पति कोले चलेगी, कहिंदी साईयां जिथे तू गया पुत गया उथे मैं भी आ रही हां। बुढ़े मापे उस रब दे हवाले भुल जावेगणगे दिन। हिंदुस्तान दियां फौजां ने की कीता, आओ कविता मेरे नाल दे साथी वराग मैया आप जी दे नाल।

बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती।

तेरी अनिक कर है हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा, सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जानाए हे, सोई जन जाणै। हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेविया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखै है जानह सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ै भईले निवासा, पाणी पावक तनह किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसहि को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जाबुद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बोझ उचारै, तुम सब हीते रहत निरालम।

ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताको कर पाहनि अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो हितेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। केह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी, कहूँ फूल राजा हुवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

दुष्ट अरिष्ट तरे तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो काहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल्बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जय भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहि, सुरसना पावई। सुने मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट, न तिन नर के रहै। हो जो याकी एक बार, चौपई को कहै। चौपई संबत सत्र है, सहस पणिजै। अर्ध सहस फुण तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया

दास गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोता गावहो हरि के राम।

परमात्मा सर्व तेरा है खेला, रोम रोम में रच रहो जैसे तेलर मेला। आपे हरि करंग है आपे बौरंगी जो

0: रास की ताई बख्शे नियारे सैबा मेरी पीरी वालिया
1: तेरे जग नाल जोजने नियारे जी सैबा मेरी पीरी वालिया रास की ताई बख्शे नियारे जी सैबा मेरी

जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लहिए। सो कहो टल गुर सेविए, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटीए, तुद जिथे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटीए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंदै साहो, जिस पास बैठिया सोहिए, सब नांदा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच

0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो श्रेष्ठ नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे सुमसु निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता
1: अलोर्य अजन्य कंगो घर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं

के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश के सर्वत्र

0: परम सत्संग सत्संग स्वरूपे
1: नमो जोगी जोगी नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो भोज भोज

0: धनकिया तुम सकट सब तारे
1: जोकर कोई बात आए है ताके काल निगनी आए है
0: रचा होए ताए सब काला दुष्ट अर्षित तेरे तत्काला
1: क्या दर्शन जाए नरो ताके ताप धनिंग मारो
0: रिदिसित कर्मो सब हुई दृश्य।

0: करियम वजमत कंसकरा पूरन सब्राता
1: किल बिग सकल देखो हरता दुसत दोकन को शे करता
0: श्री जब दे दियाला पूरन ग्रह गंत काला
1: मन बाशद फल पावे सोई दुगना तिसे व्यापद कोई अरिल
0: स्ने जो यास रसना पावे स्ने मोच लचित तावे
1: दुख दरब

0: कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया
1: तिनका मोह टूटा तिनका सब सचे सवारिया
0: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया
1: बाबा जिस तू देहे सोई जन पावे
0: पावे ता सो जन दे जिसनो होर क्या करे विचारिया
1: एक भरम भूले फिरे दह दस एक नाम लाग सवारिया
0: गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाना पावे
1: कहे नानक जिस देहे प्यारे सोई जन पावे
0: आओ संत प्यारियो अकत की करे कहानी
1: करे कहानी अकत केरी के द्वार है पाईए
0: तन मन तन सब सो गुरु को हुकम मनिए पाईए
1: हुकम मनो गुरु के रागावो सच्ची वाणी
0: कहे नानक सुनो संतो कतियो अकत कहानी।

0: जागे जिना हर मन बसया बोला है अमृत बाणी
1: कहे नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हर लिव लागे जागत रहन विहानी
0: माता के उदर मह प्रत पाल करे सो क्यों मन हो विसारी है
1: मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अग्न आहार पोचावे
0: ओसनु केहो पोहो ना सकी जिसनु अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए
0: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मन हो विसारी है
1: जैसी अग्न उदर में तैसी हर माया
0: माया अगन सब एको जही करता खेल रचाया
1: जात इस पाना तजन में आ परवार बला पाया
0: जब चुड़की लगी तृष्णा माया अमर बरताया
1: हे माया जिधर विसरे मोह बुझे बहु दूजा लाया
0: नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी बिच्चे माया पाया
1: हर आप मूल कह मूल न पाया जाए
0: मूल न पाया जाए किसे बिटो रह लोक बिल लाए
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सो पिए बिचो आप जाए
0: जिसदा जियो तिस मिल रहा है।

के नेत्र अंत से सतगुर मिले दिव्यदृष्ट होई। साचे सुनने नु पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी। सच अलख विडाणी।

0: सतगुरु दया पर पूरे बिनवंत नान गुरु चरण लागे वाचे अनहत तूरे वाहे गुरु जी का खालसा
1: वाहे गुरु जी की फतेह। बारह महा माझ महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के बिछुड़े कर कृपा मेलो राम
2: चार कुंड दया इस पर मैं

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: चक्र चेहन बरन जात, अरपात नहिन देहे, रूप रंग अर रेख पेख, को कह न सकत के हे। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, अमितोज कहि जय। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजय। त्रिपाव

त्वय सर्वनाम कथय कवनम कर्म नाम वर्णत सुमत सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत संदी नूर अरसों कुरसों चटिय तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिय सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साह जिस पास बहिठिया सोहिय सब नादा वे साह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला तीजा जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उबरे तित्ते लिए उबार